साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीत। जिस शब्द अंदर सतगुरु जी सानू जोत दी पहचान दसते ने, पर तुसी तको साहिबां दा इतिहास पढ़ के कि साहिबां नू बचपन विच ही कितनी लगन सी। कहिंदे ने जदों बच्चियां नाल खेलदे प्रभु भगती दीआं गल्लां करदे ते बच्चे कठे हो के सतगुर दे इर्द गिर्द बह जांदे, साहिब जी सानू भी उस मालिक दीआं गल्लां सुनाओ। कहिंदे ने सारा सारा दिन बीत जाना, उन्हां बच्चियां ने सतगुर दे मुखो मिठे मिठे बोल सुन के अपने घर जाना भी भुल जाना। जिस वेले रात पैनी सतगुरु जी ने भैन जी नूं बेनती करनी, भैन जी ना ता मेरा चित करदा कि इन्हां बच्चियां तो दूर होवां ते ना ये बच्चे मेथों दूर हुंदे ने, ते तुसी किरपा करो रात दा भोजन असी कठे ही छकांगे कठे ही खावांगे, तुसी एना ले भी भोजन तैयार कर लो। सो कहन तो भाव सतगुर ने केवल ए बचन आख्या नहीं, पहले बचन नू कमाया है कि सब अंदर परमात्मा दी जोत नू वेखना। छोटे छोटे बाल जो नगर दे विच रहन वाले ने, ओ जे घर विच आ के बह गए ने ते इको जगह बैठ के प्रसाद छकना है, किसी प्रकार का कोई पेन पेत नहीं रखना। इसलिए साहब कहिंदे ने भाई आओ आपां जोत वेखी।

कि भाई इस संसार विच जेड़ा भी मनुख आया है उस अंदर जोत एक परमात्मा दी ही है, क्योंकि जोत तो बिना कोई भी इंसान नहीं है। धन गुरु अमरदास पातशाह का उपदेश है, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी तां तू जग में आए। ए गल वखरी है कि आपा जोत देख नहीं रहे, पर जोत तो बिना कोई भी नहीं, सारियां अंदर जोत परमात्मा दी है। हुण जोत नजर क्यों नहीं आउंदी, पांडे ने सवाल किया, पातशाह जे सारियां अंदर जोत है ते जोत नजर क्यों नहीं आउंदी। साहिब कह लगे, पांडा जी गल इंज है कि दुनिया दे लोकां ने जात दी दीवार इतनी वड्डी कर दित्ती है कि सानू जोत नजर नहीं आउंदी। हुण जद सामने दीवार ही खड़ी हो जाए जोत किवें नजर आवे। कहिंदे ने जोत है अंदर, पर इसे अंदर एक होमे दी जात दी दीवार भी खड़ी होई है। जद तक वह दीवार नहीं गिरती जोत नजर नहीं आती, क्योंकि जोत तो अंदर ही है ना, बाहर नहीं है, जोत अंदर है। पर उस जोत नू प्रगट करना है। वो जोत प्रगट किवें होवेगी? साहब कहते ने जात ना पुछ जोत की पहचान कर। ते जोत की पहचान ता हो सकती है आपां पहले जात भुल जाइए, आपां जात नू छड़ दईए, ऊच नीच छड़ दईए, अमीर गरीब छड़ दईए, वड्डा छोटा छड़ दईए। कते मन च ऐसा ख्याल ना आवे, कहिंदे ने फिर जोत दी पहचान हो सकती है। साहिबां ने बाणी विच

ही परमात्मा। मरण तो बाद मुक्ति किन्नी वेखी है, मुक्ति देनी ते जिउंदियां दे, जिउंदियां मुक्ति चाहिदी है मरण तो बाद नहीं। ते ए पंडता ने जो मेरी बेपती कीती है मेरी नहीं तेरी है, क्योंकि मैं तेरी भगती करन आया मंदिर विच, इन्हां मैनू चुक के बाहर मारे है। कहिंदे ने अकाल पुरख कोलों बर्दाश्त

यह मन उपजी, मन च ख्याल आया अर्जन उठ, अमृत वेले जे तेनू अकाल पुरख ने उठाया है ते इहदे पिछे एक राज है। यह मन उपजी प्रगटियो जग पंथ, तह कारण कीजे अब ग्रंथ। जग अंदर पंथ प्रगट होया है ते इस पंथ वास्ते एक ग्रंथ तैयार करो, इस ग्रंथ दी जरूरत है। हुण उस पंथ वास्ते एक ग्रंथ तैयार होया ते पंथ केड़ा है, एक उत्तम पंथ। सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ की रत की गुरु रामदास राखो सरनाई। उत्तम पंथ साध सकता, इस पंथ वास्ते इस ग्रंथ दी साजना होई है। ते साध संगत हुण पंथ चलाया है गुरु नानक ने, ग्रंथ दी साजना कीती है धन गुरु अर्जन साहिब ने। ते इस गुरु ग्रंथ दी ताबिया हजूरी विच रहण दा हुक्म कीता है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरा की दे जो प्रभ को मिल बोच है खोड। शब्द में ले राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोए ख्वार होए, सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। भाई दोहरा इथो तक ही है, अगे आपा जिन्ना मर्जी पढ़ लईए पर दोहरा केवल सतगुरु ने इन्ना ही उच्चारण किया। खैर, जानो जोत ना पूछो जाती आगे जात ना है, सतगुरु ने इस आवाज नू बुलंद रखिया। ते साध संगत वेखो इस गुरु ग्रंथ साहिब अंदर किन्ने भगत बराजमान ने, 15 भगत 11 पट, 4 सिख ते 6 गुरु साहिबान दी बाणी तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर मौजूद है। ते आपा गुरु दा हुक्म मनदे होए ख्याल करिए, जे गुरु ने जोत दी गल कीती है आपा जात क्यों पुछने, आपा क्यों ना जोत दी गल करिए। हुण अगे चलिए धन गुरु अर्जन साहिब तो बाद गुरु हरगोबिंद साहिब, गुरु हरराय साहिब, गुरु हरकृष्ण साहिब, गुरु तेग बहादुर साहिब ते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जिन्हां ने अज फिर जोत दी गल करदे होए कहा, जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है, ना काट है ना बाट है, ना काट बाट होत है। गल जोत दी कीती। हुण मैं एक जिक्र तुहाडे समक्ष होर रखना चाहना, कई बार साडी जबान ते लफज आउंदे ने 10 गुरु साहिबान, ना भाई साडा गुरु इको है। साडे गुरु दे स्वरूप जरूर 10 होए ने, लेकिन गुरु 10 नहीं हन, गुरु इको ही है। फिर असीं इत्थे कहिंदे आ 10 स्वरूपां दी प्रतख जोत, शीश नूं आओ ते आखो धन गुरु ग्रंथ, ओह वी इको ही है। क्योंकि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने, प्रतख गुरु निसार। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं प्रतख गुरु जानो, क्योंकि शब्द गुरु है, इत्थे दे गुरु नहीं आख्या। जद गुरु नानक पातशाह अगे सवाल होया सी तुसी गुरु हो, ते गुरु नानक पातशाह ने भी नहीं आख्या कि मैं गुरु। इसलिए गुरु शब्द है, आपां शब्द नूं गुरु मनना है। इस वास्ते साडा गुरु इको है। कलगीधर पातशाह कहिंदे ने गुरु केड़ा है, आद अंत एक है अवतारा।

0: अकी चढ़ाओ चरण दा। भगत कबीर जी नू सेवका ने पूछा सी, महाराज तुसी स्वर्ग भी निंद दिते ते कह रहे हो भाई पूर्ण गुरु जो जिन्हां दा होंदा है ओ नरकां विच नहीं जांदे, नरक सुरग ते मैं रहो सतगुर के प्रसाद। कबीर जी नू बेनती की थी, भाई तुसी स्वर्ग भी निंद दिते नरक भी निंद दिते, कोई सच खंड तुहाडा है भी सही? ता कबीर जी कहंदे ने भाई मेरा सच खंड ता साध संगत है। उचारण करो श्री
1: वाहेगुरु।
0: मेरा सच खंड ता साध संगत है, कह कबीर को कहिए काहे।

भगत सैन जी दे घर आई। सोभा सुनी है ना, सिमरन वाला है। भगत सैन जी ने भोजन पानी छकाया, सेवा कीती। रात्रि शुरू होई, महापुरुषां ने कीर्तन भी आरंभ कर दिया। ते भगत सैन जी अखां मूंद के बैठ गए।

और सत्संग जीओ ए राग सुगड़ई है जो आप जी नूं सुनाण लगे हां। इस विच गुरु पातशाह कारण करते जो किया सोई है करना, जे सो तावे प्राणिया पावे तुर लेना, जो तेरे मस्तक ते लिखिया है। बिन कर्मा किछू न लबई जे फिरे सब तरना, गुरमिल पाओ गोबिंद का भय डर दूर करना। ए भी बड़ी पुरातन रीत है जो आप जी नूं आप सब सुनने वाले बैठे हो ता ही दिल करदा जो दो दो चीजा हन आप दी सेवा विच

शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने शीपा सलार नू हुकम दिता भई तू कश्मीर नू जा रहे जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नू भी शोध दा जाए उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो तृतीय मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई कि महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया ए शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही

अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी बिरथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल

कहे मन लाजुम रसा, अवरा पे कहे मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना कहो। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास कर दे, मन लोकां पास फरोल दे। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वागुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वागुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, ता सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच इस शब्द विच

सरोहि नमो श्री प्रभति बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है जिस वेले योधे रण विच जूझ देने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार देने ओ शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने भगौती बडैली सरोही ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री

सुभता हाथ सोही नमो लोहे की चोट का झलहे नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोक्ष दाती अपंगी फिरे शाम है मोक्ष दाती।

तुम साथ दो जिंदगी रख दीजिए पर जदनी पिंजनी है सदौती दंडनी बिंजनी है सगौती सदा जय सदा जय सदा जय भगौती वह सदा जय सदा जय सदा

खंडो खड़ग अस्कृपान खंडो खड़ग तुप्त तवर आती अस्कृपान खंडो खड़ग तुम्बक तवर अर्पी सैफ सरोही सैफी यही हमारे पीर सैफ सरोही सैफी यही हमारे पीर तू ही तवर तलवार तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार नाम तुहारो जो जपे

शास्त्र नाम नमस्कार जिते शास्त्र नाम नमस्कार काम संगीत पुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आगर्दन तीरं तुक तड़क आगर्दन तीरं तुक तड़क आगर्दन तीरं तुक तड़क आगर्दन तीरं

0: भाई नंदलाल जी।
1: ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त, हमेशा जिंदा अस्त। ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

मिटे नाम लिए जम त्रास मिटे तल काल नसे हर सर धैले लोक परलोक सभी सुधरे सेवा करन दा फल सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे लोक परलोक सभी सुधरे लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत पराप्त।

चार ताल दे अंदर यह रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच, इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने, और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण, गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निवकी, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे,
1: सेव करो करना निज की जैसे उचार पुजारिए, नाम लिए जम त्रास मिटे, कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। ए जो जंग विच फतेह हुई है ये किसी आदमी की नहीं, ये वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे कि खालसे की फतेह चार ऊंट विच होएगी, चढ़दे तो लेंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्हां दे अपने शब्द सरवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे,
1: लंक लूट लिया, लंक

0: देख खालसे को तुर्क जाएंगे भाई, देख खालसे को तुर्क जाएंगे
1: भाई।
0: हस्ती साजे झूलन नेगे हस्ती साजे द्वार द्वार पर नौब धुके सवा लाख जब धुके पलीता सवा लाख जब धुके पलीता तबे खालसा उदय।

लोटा गुआच गया, पैसे गुआच गए, ता सारे पांड सिद्धां कोल गए, साडा लोटा लभ दिओ किसे ने चुक लिया। हुण लुकोया सिद्धां नहीं सी, लभ के किवें देंदे? सिद्धां ने लुको ए लोटा, सिद्धां ने लोटा जान के लुकोया सी। असी लुकोवांगे, भंड साडे कोल आणगे, ते असी भेजांगे गुरु नानक दे कोल। साडा लुकोया लोटा कोई लभ नहीं सकदा, ते गुरु नानक हार जावेगा। आखो सतनाम श्री वाहे। ओही गल सिद्धां ने भंडा नूं कहा, ओ जिहड़ा गुरु नानक बैठा है, जाओ ओदे कोल, उस नूं आखो जे ओदे विच कोई शक्ति है ते तुहाडा लोटा लब देवे। ये सारे भंड धन गुरु नानक साहब दे कोल गए ते बेनती कीती, महाराज साडा माया वाला लोटा लब देओ, किसे ने चुक लिया? तां भाई गुरदास जी बयान करते,

आखो सतनाम श्री वाहे। पंडा ने बेनती की, बाबा जानी जान पुरख, वो बाबा नानक वो ते जानी जान। सिद्धा ने जिथे लोटा लगोया सी, गुरु नानक साहब ने उथों कढ दिता। हुण लोक जय जयकार करन लग पे। सिद्धा दा लुकोया लोटा कोई लभ नहीं सी सकदा, पर बाबे नानक ने लभ दिता। गुरु नानक दी जय जयकार होण लग पई, पर सिद्धा नूं होर गुस्सा चढ़ गया।

तू पखंड करना है। पेख उतार उदास दा, पहला तू उदासियां वाले कपड़े पाए, हुण संसारी कपड़े पा ले। पंगरनाथ कहंदा है, ऐ नानक तू ग्रिस्ती है, तू व्याह कीता है, तेरे बच्चे हैं। तो जिहड़ा ग्रिस्ती है, दियां पुत्रां वाला है, वो रब दा भगत नहीं हो सकता, वो जोगी नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। ये गल पंगरनाथ ने कही। हुण सत्संग तुसी सारे ग्रिस्ती बैठे हो, तियां पुत्रां वाले परिवार वाले, पंगरनाथ दा यह सवाल भी सुन लो। पंगरनाथ कहंदा है, ग्रिस्ती उच्चा नहीं हो सकता, ग्रिस्ती रब दा भगत नहीं हो सकता, जोगी नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता, ग्रिस्ती माड़ा है। ते पंगरनाथ दा विचार है, जोगियां दा विचार है, ते गुरु नानक दा की विचार है, वो भी सरवण करो।

होए अतीत। अतीत कहंदे ने जिहड़ा घर बार छड दे दे। साहब जी कहन लगे कमाल है, एक पासे कहंदे ओ संसार माड़ा है, एक पासे कहंदे ओ संसार रब दी खेड है। आखो सतनाम श्री वाहे। एक पासे कहंदे ओ संसार माड़ा है, गृहस्थी माड़ा है, गृहस्थ माड़ा है। छड़दा ते बंदा उसे चीज नूं है ना जिहड़ी चीज माड़ी होवे।

तुसी कहन दियो जिथे को जन्म लवे ओ जगह सूत काली। ते साहब जी कहन लगे सूतक दा मतलब तुसा झूठ के। ते साहब जी कहन लगे जे तुसी सूतक दी गल करदे हो ते फिर सूतक तों ते कोई भी जगह

अगर किसी दे जम्मण दे नाल ही घर विच सूतक है फिर सूतक को किस तरह बचोगे? सूतक तो क्यों कर बचोगे? सूतक पवे रसोए, सूतक ता हर वेले तुहाडी रसोई विच है, क्योंकि रसोई विच अनाज है, खाण दीआं चीजां ने, पानी है और इन्हां विच कीटाणु हुंदे ने। छोटे छोटे जीव परमेश्वर दे पैदा कीते हुए हुंदे।

एक औरत मर जाए पालिए कहते ने लभना ते फिर इंसान व्याह वास्ते दूसरी औरत लभद औरत दे बगैर जीवन नहीं पंड होवे बंधान और दुनिया दा हर रिश्ता।

और वड्डा होके जिसने जन्म दिता है उसे नु फिर कहन लगना है कि तू नीवी है, तू आदमी दे बराबर नहीं, तेरा दर्जा इंसान दे बराबर नहीं। पर धन गुरु नानक साहब कहंदे ने ठीक है, कोई जीव माड़ा हो सकता है पर सारी औरत जाती